0: It's Hobart's longest running competition. In fact, we found this in the archives.
1: So if you know this secret sound, give the Hobart Exchange a call. Have Beryl put you through. Our telephone number is 3. Hello, call up.
2: Hello, chap. Is it one of those new fangled electrical devices used to turn on a lamp?
1: Correct, it is. It's called a lamp switch. You've won 20 pounds of flour.
2: Hurrah!
0: Still going strong in 26. The 7HOFM Secret Sound. With Sarah, Mick and Jono before 7, Beau after 11, and in pickup after 3. Wrong answers are on 7hofm.com.au. For My Mac, your experts in all things Apple. And Sleepy's Cambridge Park with free old mattress removal. 7HOFM.
3: क्या आप बेहतर करियर की तलाश में हैं? योग्यता से कहीं अधिक वो नौकरी पाने का वास्तविक मौका जो आप वास्तव में चाहते हैं? AAS ऑस्ट्रेलियाई शैक्षणिक समाधान ये उद्योग प्रशिक्षण और बेहतर कार्य अवसरों के लिए आपका मार्ग है. ऑस्ट्रेलियन अकेडमिक सॉल्यूशंस अनुकूलित समाधान प्रदान करता है. सुरक्षा, निर्माण, यातायात नियंत्रण में व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ और आतिथ्य सत्कार बस कुछ ही नाम है. आइए और CBD में 45 मुरे स्ट्रीट पर लेवल 3 पर हमसे मिले और आज ही सही कौशल के साथ तेजी से नियुक्ति पाए.
4: Just search Australian Academic Solutions.
5: Are you still looking for retirement living options?
6: Yes. Barossa Living in Glenorchy is our first choice. Architect designed, low maintenance, and designed for real connections.
5: I love the lock and leave lifestyle.